0: हालांकि बाजी इस बैनर की दूसरी ही फिल्म थी। इस फिल्म से ऐसे कई लोगों ने अपना फिल्मी सफर शुरू किया जिनकी कहानियों में इस दुनिया की दास्तान बंद है। उनमें से एक थे गुरुदत्त।
1: अब मैंने जब अखबार ज्वाइन किया है तो गुरुदत्त वहाँ असिस्टेंट डायरेक्टर था, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑल्सो असिस्टेंट डांस डायरेक्टर एंड वी बिकेम ग्रेट फ्रेंड्स। तो दोस्त इतने जबरदस्त दोस्त बन गए थे कि जब उसने कहा कि मैं कभी फिल्म डायरेक्ट करूंगा देव तो तू मेरा हीरो होगा, और मैंने कहा कि जब मैं कभी फिल्म मेरी कंपनी होगी कभी तो मैं आपको इन्वाइट करूंगा आप फिल्म बनाओ। सो आई कैप्ट माई वर्ड, आई ब्रॉट हिम इन।

बाजी की कामयाबी ने देव साहब के जीवन को दिशा दी। जाल, 9-2-11 और सीआईडी में उन पर फिल्माए गए सुपरहिट गानों ने देव साहब को सुपरस्टार बना दिया। सुपरस्टार से एवरग्रीन सुपरस्टार बनने की ये कहानी जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। नवकेतन बैनर के नगमे आज भी माहौल में नशा पैदा कर देते हैं। जमाना ब्लैक एंड व्हाइट का, बोल जो दिल को छू लें और संगीत जो सदियों तक गुनगुनाया जाए। आमतौर से माना जाता है कि जब फिल्मी संगीत अपनी खूबसूरत पहचान बना रहा था तो इसमें सबसे दिलकश तस्वीर उभरी देवानंद की।

0: It's not because I'm a sad man, it's not because I believe in sorrow, but I think Kishore ne dukhi man mein ye gana gaya tha, jo ke do minute mein compose hua aur shayad 5 minute mein uska mukhra likha gaya sahi ludhiana mein. Dukhi man mere sun mera kehna, jahan nahi chaina wahan nahi rehna. Simple but three dimensional, go straight into your heart.
1: Dard hamara koi na jaane.
2: There never used to be a film without songs, 4 or 5 songs given to me, and all my directors used to insist, Dev, you come and have a sitting with the music director and pick your own song, own tune. I would not like to sing a song which I don't like.
3: साठ के दशक की शुरुआत तक देव साहब राज कपूर और दिलीप कुमार के साथ एक त्रिकोण के आकार में उभरे. आजादी के बाद इन तीनों ने अदाकारी की एक नई शैली को जन्म दिया. 50 और 60 के दशक कई मानों में हिंदी सिनेमा के बेहतरीन साल रहे. मासूम प्रेम कहानियों की दिलकश तस्वीरों का जमाना और उनमें रची बसी देव साहब की रोमांटिक पर्सनैलिटी.

0: हालांकि बाजी इस बैनर की दूसरी ही फिल्म थी। इस फिल्म से ऐसे कई लोगों ने अपना फिल्मी सफर शुरू किया जिनकी कहानियों में इस दुनिया की दास्तान बंद है। उनमें से एक थे गुरुदत्त।
1: अब मैंने जब अखबार ज्वाइन किया है तो गुरुदत्त वहाँ असिस्टेंट डायरेक्टर था, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑल्सो असिस्टेंट डांस डायरेक्टर एंड वी बिकेम ग्रेट फ्रेंड्स। तो दोस्त इतने जबरदस्त दोस्त बन गए थे कि जब उसने कहा कि मैं कभी फिल्म डायरेक्ट करूंगा देव तो तू मेरा हीरो होगा, और मैंने कहा कि जब मैं कभी फिल्म मेरी कंपनी होगी कभी तो मैं आपको इन्वाइट करूंगा आप फिल्म बनाओ। सो आई कैप्ट माई वर्ड, आई ब्रॉट हिम इन।

बाजी की कामयाबी ने देव साहब के जीवन को दिशा दी। जाल, 9-2-11 और CID में उन पर फिल्माए गए सुपरहिट गानों ने देव साहब को सुपरस्टार बना दिया। सुपरस्टार से एवरग्रीन सुपरस्टार बनने की ये कहानी जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। नवकेतन बैनर के नगमे आज भी माहौल में नशा पैदा कर देते हैं। जमाना ब्लैक एंड व्हाइट का, बोल जो दिल को छू लें और संगीत जो सदियों तक गुनगुनाया जाए। आमतौर से माना जाता है कि जब फिल्मी संगीत अपनी खूबसूरत पहचान बना रहा था तो इसमें सबसे दिलकश तस्वीर उभरी देवानंद की।

0: It's not because I'm a sad man, it's not because I believe in sorrow, but I think Kishore ne dukhi man mein ye gana gaya tha, jo ke do minute mein compose hua aur shayad 5 minute mein uska mukhra likha gaya sare ludhiana mein, dukhi man mere sur mera kehna, jahan nahi chaina wahan nahi rehna. Simple but three dimensional, go straight into your heart.
1: दर्द हमारा कोई न जाने.
2: They never used to be filmed without songs. 4-5 songs given to me, and all my directors used to insist, Dev, you come and have a sitting with the music director and pick your own song, own tune. I would not like to sing a song which I don't like.
3: साठ के दशक की शुरुआत तक देव साहब राज कपूर और दिलीप कुमार के साथ एक त्रिकोण के आकार में उभरे. आजादी के बाद इन तीनों ने अदाकारी की एक नई शैली को जन्म दिया. 50 और 60 के दशक कई मानों में हिंदी सिनेमा के बेहतरीन साल रहे. मासूम प्रेम कहानियों की दिलकश तस्वीरों का जमाना और उनमें रची बसी देव साहब की रोमांटिक पर्सनैलिटी.

0: जिसकी अदाकारी ने लाखों का दिल जीत लिया, जिसकी कामयाबियां किस्से कहानियों में सुनाई जाती हैं।
1: किसी का आंचल आंचल में क्या जी,
2: अजब की हलचल।
3: मिस्टर देवानंद ब्रॉट द डिफरेंस बिटवीन एन एक्टर एंड ए स्टार। A star who creates an enigmatic quality, a Krishna. And today, till today, he is carrying on.
4: Chahe kitni kathin dagar ho, hum kadam badhate jayenge. Kadam badhate.
0: Sun 45-46 mein आर्ट्स की डिग्री हाथ में लिए एक नौजवान मुंबई पहुंचा। तब तक मुंबई दुनिया के जाने माने शहर के नाम से उभर रहा था। देव साहब भी उसी स्ट्रगल से होकर गुजरे जैसे आंखों में ख्वाब लिए उन जैसे सैकड़ों और।
5: आई लैंडेड इन बॉम्बे इन 1943। आई नो वेयर टू स्टे। आई यूज्ड टू स्टे विद फ्रेंड्स फॉर 10 डेज 7 डेज एंड हॉप अक्रॉस टू अनदर फ्रेंड। And then the certain few moments came, जेब में पैसा नहीं हुआ करता था, खाने के लिए पैसा नहीं हुआ करता था, फिर छोटी छोटी जॉब्स करनी, भूल गया हम कहाँ जॉब की है, फिर छोड़ दिया कि मेरे काम की जॉब नहीं है। Then I took up a job with the military censors and I took a job for 160 rupees a month and then I ultimately chucked that also and then I got my break.
6: I had no training of acting because there were no academies or training schools those days. All that I've learned over the years is through trial and error.
5: But the real Devanand who came into being was in Ziddi. Ziddi was a Bombay Talkies film produced by Ashok Kumar and I had the title role.
7: He was sitting in the garden and I was in the producer. I was in. So I said, what do you want? He looked very handsome young boy. I said, what do you want? I want to work. I was working in a picture. I was in the producer. I was working in that picture, Ziddi. So I said, you do it. And the producer, the director said, no, no. He didn't do it. He said, you do it. So I said, yes, he will. And he did it.
0: ये देव साहब की काबिलियत का नतीजा था कि वो जल्द ही सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगे। कुछ सालों में ही उन्होंने नवकेतन के नाम से अपना बैनर भी शुरू कर दिया।
5: My brother was he was in Dune school teaching and he came wanted to be a film director and a writer.

0: हालांकि बाजी इस बैनर की दूसरी ही फिल्म थी। इस फिल्म से ऐसे कई लोगों ने अपना फिल्मी सफर शुरू किया जिनकी कहानियों में इस दुनिया की दास्तान बंद है। उनमें से एक थे गुरुदत्त।
1: अब मैंने जब प्रभात जॉइन किया है तो गुरुदत्त वहाँ असिस्टेंट डायरेक्टर था, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑल्सो असिस्टेंट डांस डायरेक्टर एंड वी बिकेम ग्रेट फ्रेंड्स। तो दोस्त इतने जबरदस्त दोस्त बन गए थे जब उसने कहा कि मैं कभी फिल्म डायरेक्ट करूंगा देव तो तू मेरा हीरो होगा। और मैंने कहा कि जब मैं कभी फिल्म मेरी कंपनी होगी कभी तो मैं आपको इन्वाइट करूंगा आप फिल्म बनाऊँ। सो आई कैप माई वर्ड आई ब्रॉट हिम इन।

बाजी की कामयाबी ने देव साहब के जीवन को दिशा दी। जाल, 9-2-11 और CID में उन पर फिल्माए गए सुपरहिट गानों ने देव साहब को सुपरस्टार बना दिया। सुपरस्टार से एवरग्रीन सुपरस्टार बनने की यह कहानी जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। नवकेतन बैनर के नगमे आज भी माहौल में नशा पैदा कर देते हैं। जमाना ब्लैक एंड व्हाइट का, बोल जो दिल को छू लें और संगीत जो सदियों तक गुनगुनाया जाए। आमतौर से माना जाता है कि जब फिल्मी संगीत अपनी खूबसूरत पहचान बना रहा था तो इसमें सबसे दिलकश तस्वीर उभरी देवानंद की।

0: It's not because I'm a sad man. It's not because I believe in sorrow. But I think Kishore ने दुखी मन में ये गाना गाया था, जो कि दो मिनट में कंपोज हुआ और शायद पांच मिनट में उसका मुखड़ा लिखा गया सारी लुधियाने में. दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, जहां नहीं चैना वहां नहीं रहना. सिंपल बट थ्री डायमेंशनल, गो स्ट्रेट इनटू योर हार्ट.
1: दर्द हमारा कोई न जाने.
2: There never used to be a film without songs, four or five songs given to me. And all my directors used to insist, Dev, you come and have a sitting with the music director and pick your own song, own tune. I would not like to sing a song which I don't like.
3: साठ के दशक की शुरुआत तक देव साहब राज कपूर और दिलीप कुमार के साथ एक त्रिकोण के आकार में उभरे. आजादी के बाद इन तीनों ने अदाकारी की एक नई शैली को जन्म दिया. 50 और 60 के दशक कई मानों में हिंदी सिनेमा के बेहतरीन साल रहे. मासूम प्रेम कहानियों की दिलकश तस्वीरों का जमाना और उनमें रची बसी देव साहब की रोमांटिक